हाँ जी दरअसल हाजिर शुलमा जिनेर कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान पर शो के दस्तोड़ी की पोहो हफ्ते के सलूर रोज है और सलूर रोज के दागा टाइम चुकुम दे दुलस नजर अबे बुझे पूर्वी और पता का टाइम के मुंग जाओ सारा खबर है तेरे टोके टका रही लतीफी संदरे डबे वर्सरा वर्सरा जिनेर कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान यानी मुंगा खबर है तेरे हम गो लगड़े रे खा नूर बता सो रोजे तासो बरा सरा खबर ही कवे ननसो जमुंगा दसी इशू रवान है देखना पहला का के आगे मने लगे दिदरे खबर ही कॉल वाड़ माँ इन बात की वो ब्यार जब खबर है तेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल आगा और दुल की जिदा टाइम के खामोशी से दिमाग गवाज और यानी साइलेंटली एंजॉय कवि और तुम त्रे खुशहाल है के नाम छे शो बस टाइम कवि और दुलस बजी टाइम बस टाइम दरजी दस इधर कहना था ना अक्सर और दुन के बजाय चीता सुशो तो बसु के इंतजार दस इधर कहना

ताकि दिल्ली ओम निशियनो बटन हाँ शेर पर हानी ओफा एंड वीरा एहाना मार दू जान से कोई गम नहीं पर ये सजा मत तो के हमारे सामने होकर भी हम तुमको अजनबी लगे सलाम टू यू स्वीट आबरू खटक था एंड दुल्हना था माहम माहा उम्मीद हानिया वफा आसिया आफिया मेरे खेलो के साइलेंट सिस्टर आई मिस यू ओके जी थैंक यू सो वेरी मच यू जहान मन्ना नेक्स्ट वीक आई एम हानी वफा रिहनु अनु गोलता का छे सही तक खा अनु गोलता का छे डेरा मना छे दो मत शेयर टपई डलई कभी खा डेरा मना छे दो मत शेयर टपई डलई कभी खा So thanks Anugul Rehano Fiza Hayata special salam okay I'm Hania for okay ji walikum salam and thank you so very much next week assalamu alaikum Rehan bhai kaise ho show bilkul show to bilkul मस्त है आपकी तरह अच्छा सलाम टू ऑल सिस्टर अभी हाय एंड हाय मां ओके जी वालेकुम सलाम मैं बिल्कुल ठीक ठाक फिर पार्ट एंड थैंक यू सो वेरी मच जहान मन्ना अगेन अभिया कहती है एंड हाय मां भी कहती है जी भाई इस तरह की मिसफिनिश विश होता है सही दी कहना बस रंजित सरस्ता रंजू बंदी तो रहेगा खा सही बशी बेगम सही हर मसाले खर्च था खा भाई बिल्कुल नहीं मगरूर दस सू किया थे मोतवशया ابیہ فرام کرکم تاسو بس پیو کی کزرت وے ما ترت وے سزورت وے غیبت وے ما خام ابیہ فرام کرکم بھائی فیس می ڈیر ائی

हां जी बिल्कुल लक्षण इंतजार मुको वज दादा के नाम चिकलकला नेट चुकम द ईशु राजी खजी ठोलो मिनवालो था इश्मा कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम के डेज याद हरकले उम्मीद चेता सुबह खबे और जिंदगी वो मखले मजोगे दिरेगी वर्षा सुमरा इश्मा कॉस्मेटिक प्रोग्राम सी आबहा तस एंजॉय करिए प्रोग्राम ब अवरे

से हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीमयाफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।

0: जी बिल्कुल मिनी वाला ट्रैक चुकम दा शकिले ना आवाज के अल कबलिन मान लवा लीदे में नशी
1: डाले बने ले बने गल
0: हां जी बिल्कुल धागो बिल्कुल डलाए भी खाना डलाए भी चाहत वो डलाए भी बेमुश खरक वाड़ो पंजाब बाड़ा में जाओ सेंस और जी को मुझे काले कड़ा हूं के ना जी ललापुर पीर दा जड़ा को ने खोटरा संदरा अब बिल्कुल देर अगला बरे दले बड़ी उम्मीद च खुश होवे भी बिल्कुल तो से काल तो से मैसेजेस चिकुम दी है मैसेजेस के सिर्फ आज तक ने सब मसलादो बिल्कुल मैसेजेस चिकुम दी आ मोता नशो की जी वो बिल्कुल काल चिकुम दा का वाला शायद से फरमो 27291292 जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम स्टारा माजे पो खैर रोगले चूक ता दी कुम जुइना वाड़ी का सबेर वजीर दे चक्रस मकन सरंग खतल दा
2: बस चक्रस मक ता खतल आई दा वो बरोमी नदी वो सख्त सोड़ दा वो डेर ये तो पता क्लिक कर दा खूब उम्र ना काम दा सोड़
0: दे दा गासे हो वेल मुझे खरोक डेर कई पूछ चाओ वेलो हां मुझे वाड़ी का उड़ का पूछ यार वक्त ये दी जो मी मुतफीड मुतफीड मुतले दा टोल पडर मडर ओ खड़ल मुझे मैं तो जो ऊर हुई मैं जो बिल्कुल रुद्रुमी वो पूछा का सबरे दला नशी वड़ी के उड़ के ब्या अच्छे कला कला वड़ी के उड़ का चे मशरूम रुपये उड़ी का ना कूर की चेता हुई जब मो तो रुपये पूछ हुई तीजे साबरों का दा पूछे पशे वही सार वही पूछ आखिरी के खाटो के समली आई तीजे बस चक्ष बच्चा इधर कवाए के ना बस आग उदासी वेदे जी सवेर वजीर चिकुम दा हम वड़ी के लगा ना बस आला देता से एगो ने वेजे वड़ू करता लरा मशूम लरा जी मुस्तरा खजे खजे खबर कई चस्तर शे पुजे बगो मुज न वर्क छे
2: एना जस्तर की जो तड़ाई वर्क
0: देखो बकपल नु करे ओ पसे लोट छे पुजे बबो वर्क वे बस दस वड़ी के दिल लरा पुछ दस वड़ी के मुझे खुश खुश मैला

को जेफा कंपनी शिफा विटामिन सी फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए ते तुसे दे फायदे दे पूरा दी तुसे ताओ डीरा जो ता फायदा देर की ते तुसे मख रंग स्पिन छी दोने दोगीना डबीना तरसरी खत्म छी दिमाग गुंजाओ खत्म छी दिमाग तुरवलाओ खत्म छी।

आजा जी वा बला खबर है तेरे तक वो जी छी शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान शिकिम प्रोडक्ट से उस खुल साई पाखिक से यू कूपन हुई आखा उड़ा कवि साई अगी दिकान दूर तवेरा सवे साई ब्यों तुसे तापशे उजी एना मीना।

ब्यूटी क्रीम बाहर डब्बी के से कोपाना लोए खुले जी ढेर सारे इनामत हासिल कर बेहतरीन और कीमती इनामत हुजैफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम हुजैफा कंपनी शिफा तेल डब्बी के मौजूदी आगा डाके पल इनाम तर ला सके फायदे दी।

जी बहादुर खान तुहाडे रे ट्राय वकडे शेर दराज डेरा डेरा मने ना जी हाजरा तुहा डेरा डेरा मने ना ओ आमना ता दा आवुज डाले कड़ाई दाई आमना टेलर दा चार रानिया।

लम्हे खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 का रख जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।

दरमान होम्योपैथिक सेंटर करक कचर ततासो पदसे मरस के मुब्तिला ये किपा आगे के बवासीर पेस्टोला यानी खूनी दाना प्रास्टेट द गुर्दे पत्री द त्रिहि पत्री थायराइड ग्लैंड यानी कदुगाड़े रसूले ट्यूमर अर्कुन्निसा और दस्तरगो पर्दे चिपनोरो जयुनो के डॉक्टरानो तास्ता द ऑपरेशन वेलेदी नुतासोराशे दरमान होम्योपैथिक सेंटर था के अल तक डॉक्टर मुस्तफा कमाल आर एच एम पी डी एच एम एस डी आई होम डी एस सी बी एच एम एस द होम्योपैथिक द दुनिया यो तजर्बाकार डॉक्टर बतासो इलाज बगैर द ऑपरेशन द मेडिसन पर जरिया बांधे कई और देना इलावा बे औलादी मर्दाना कमजोरी जनाना पोशीदा अमराज मैदे अल्सर और द मैदे जुमला अमराज और द शुगर मुकम्मल इलाज ब्लड प्रेशर और दजड़ जुमला अमराज शामिल दी डॉक्टर मुस्तफा कमाल से पजदीद क्वांडम मैग्नेट एनालाइजर मशीन पजरिया बांधे द टोल बदन मैना कई और द दे सरा बताउस्ता फेजोथेरापी द मशीन पजरिया बिल्कुल फ्री सुराशे और दरमान होम्योपैथिक सेंटर नखपल इलाज जर तर जरा दरला सके पतेदा दरमान होम्योपैथिक सेंटर नेज खुशाल खान खटक यूनिवर्सिटी हीरो जनरल स्टोर ता बिल्कुल मखामा मोबाइल नंबर दे 0331 12 12 413।

हाँ जी बिल्कुल मिनोवा प्रोग्राम सरप्राइज शो बिल्कुल एम एस जी तब हाल को इंतजार हुई के ना एम एस जी वाला जी प्रोग्राम तो खैर कल कल हुई के ना बिल्कुल एम एस जी का प्रोग्राम हो रही देखो लला रो कला था जी बिल्कुल एम एस जी माशरा शुक ना मीने वाले दे परा और स्पेशल मीने वाले दे परा जी मीने वाल दान हुई के ना जे मुश्ता सोकरा नगल मुझे इंतजार बंदी हूँ और जी बिल्कुल मीने वाले नाम प्रोग्राम के बिल्कुल गप शप चिकुन आगा लगे जी के ना मीने वाला दावा है जो मौसम संगे दे मौसम बरोबार दे के ना दे बरोबार और बिल्कुल दाल तक जो कुम मौसम दे के ना बरोबार दे यखनी दे के ना दाल दाल स्टोरी को बिल्कुल यखनी दे लगा स्वाद तलोड़ू के ना हाँ जी बिल्कुल मीनवाल बीच लला चिकुम दा काल नो खोली के ना बिल्कुल तो से काल चिकुम दी अब हम खोलू के ना ओ गप शप चिकुम दा अब हम लगे जी ओ काल तब तो से लश चिकुम दा इंतजार चिकुम दा अब कर